0: আজ মিয়ার গাড়ি হেন্দু দিহা গাড়ি এম মিনিট ফানসা শেষি কিন্তু তেবে ফোন আসাম থেকে কিন্তু আনি তিবিহা রাজ্যে গাড় আদর মনে তুই রাজ্যে গাড়ুকে স্টুডিও মেগুত করে এমে দেনি আদুকে রাজ প্রোগ্রাম তেং আদুকে রাজ প্রোগ্রাম কালগ্রহ হেম মাসে কে মিকুর আনি তিবে ফোন কে দুয়ে হিদের ওর মঙ্গা উফা আমের কাং ইতুর কদ্দিন ওয়েঙ্গে তো দিন মিমুগুত মলালা রগল মঙ্গে রাজ্যে বসে মাফারা কিনে বদল তাম মিয়ানানি গানুন তাকা গাওয়া তাক বসার বড়ে তে বদল তাং এবার আন্না মন্দে হরি আকম কতিবে ফ্লাহ হদ বারবা তিঙ্গে তো মিয়ার মগমতি গমে মি মি দিমাবা অ্যাক্সিডেন্ট তো মাসাল হাল্লো কুরমাট কাওয়ারকিনে বদল তো গেন বেদেহন শাহ মি হার জোরিমানা ফার্স্ট অ্যাস্ট্রোফিয়া পর বড় ইনম লাইসেন্স বাতিল করে ওত কামি হার মতি বেম মগ হোরাস কুরার গব সমাল কান দেন জেন হুরিয়া কাম কস বে ফ্রম বিশ্রামতি মি হুরিয়া বদল পিস মি গেন হেনে আস্তু আলগন মে এম এন গে বিস সালামতা রাখা তর কামট কা এম হুরিয়া পে ফ্রস মি কাম কাম গে পার লন দি মি কাম কাম আহুল ভেরিব মার
1: ফারুদি জিম্মা দা করাং এ বচে
2: দুহুকে মাউলু
1: দুহুকে মাউলু মিবা গালুন মে মি বালালানি হিতুকে বালিতা কোন রাখা তেরুমা বালিন ফাসেহা কদ্দি আলুং আমু হালে তাগ গেনাউমা ফিজিওথেরাপিস্ট টংগে দাউরু মি মাউলু মি দ্বাহক দক্কালানি এগতো
0: আদে মি ফিজিওথেরাপিস্ট ডে কে মাদ মহনুশা মাদ মাই কি 8 সেপ্টেম্বর মি ফা করোনি তো নি ফিজিওথেরাপি তো হকে গতো গতে আলো মে মি কামা বে গতো মি হার ওয়াহক দক্কাল মে সেকে করনি
1: মি কামা গলে গতো আলগন মে না মাউলুমাত ইতুর মাউলুমাত তিন মাউলগন মে না কো মি ওয়াগুত স্টুডিও গ মে নেভি ফিজিওথেরাপিস্ট আদি এমপিএ গ নাব রাইস ইমান আহমদ ইসমাইল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাব্বুল মারহাবা
3: ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাব্বুল শুকরিয়া আঙ্গে তো আরন মেনে দে ফুরসত
0: কেন তো হাম ইমান
3: রাঙ্গলে রাত করে আলহামদুলিল্লাহ
0: দেন ফিজিওথেরাপি কি মি মারাগিন বেফুলং মারাগিন কোরবন জে হে কামে মি বাই বেফুলং ই ওয়ার ফাসে হে কামে কে মি হাম ওয়ার কুটি কুটি কাসরত তা কল দেবে তোমার নামে নহ গে গে সেন কল দেবে না এম সম দেখে বে কামে নুনিয়া আরগিন বে ফনে ওন্দগো কামা কা বেস বে আস্ত দে এক মে মি কাম বাকিং খাস দুহে দুনিয়া এক ফিম বর্গ ফা কোরানে এস বাক বর পড় কামা কা বাতি গান আস্ত কো বে তো ইমান ফিজিওথেরাপি দস ফা কোরম গে মি বে ন মকি
3: আন ফিজিওথেরাপি দস ফা হগে কোরম গে মা গন্ড মকসদ কি মি মুরস্তামা ওয়া কি সিহি গতুং দুড়া হে মিনিবং আদি হারকাতরেবে উলে মুস্তামে গতকে হেদুমটকা ফিজিওথেরাপিস্টুং কুরা মাসাকেতকুগে আগো ওয়াজং কুরুং দেন আদি গেতরুং বালি তাকুং রাকাতরে উমশা বালিং ফাসে হবুমগা ফিজিওথেরাপি গে মুহিমমুকং মামদো আমুং হেলন তেরি কুরুমটকা আলুন মেন কুরা মাসাকেতফা কুরুমটকা
0: দে মেহারুগে আমাদুনিয়ে গে শিয়ার ওয়াসমি কান্ডারি ফোন নানি হামা মি আলগন মে মিয়াদ মি ওয়াহক দাকালা হিতু বেলতে কোন রাখা তের মা বালে ফাসে কদি আলুং আম হালত কে নাম গরি রিহ্যাবিলিটেশন নো ফিজিত নো তে ফিজিগা ফিজিওথেরাপি টুং কে দাওরা ভে গো তো মে ফাহারুগে মে মানে শিয়ার গো ওয়াসমি ওনানি আস্তু কো বে তো মে মি শিয়ার গো মুহিম কম কি নো মি ফাতে শিয়ার কান্ডারি ফোন কি বে তো
3: মিফাদ শিয়ার কান্ডেলমগে এমএ মুহিম এ মকসদ কি আসল মিহার দুনিয়াগে নিসপতম বালারস আদালন মেন কুড কুড রাজ্য পেল কমগ বিএস হিতুগে বালিত মেওনি ওয়ার বড়ং আম ফেঙ্গে তে হিতুগে বলতে কে সবাবং আলগন মেন দেরিউলুম কুরা আসর তো ওয়ার বড় মি হুঙ্গে হরকাতের কমা হেল ফেলুলুম মি হুঙ্গে দুলে হেও কং মি হিতুগে বলতে কা ওয়ার বড় গুলি লাম হে ফ মেওনি হে মিমা এ বালিত কুগে সবাবং আলগন মেন দেরিউলুম মেন না বদল তাকা মি বদল তাকা আলগন মেন আরাগন নিকিহিনে তমিকাল কাঙ্কং দেনে গানু গাতুমকি বার মুহিমুকম কা বেফাওয়াতি আসলো মেশিয়ার আনে ওয়ার্ল্ড ফিজিও মে জামিয়া এমস নাঙ্গাওয়াফ মেওয়ানি
1: মেহারুগে ফিজিওথেরাপি দোস ফাহাক কুরুমগে গতন রেফাওয়া হারকাত থাকি কোবাতো
3: মিয়াহারকে ফিজিওথেরাপি দোস হারকাত ফাহাকুরম গতং আলগন মেঙ্গে জামিয়াক ফরাতুম ফদেবরক গিনা কাঙ্কাম মিবানি রেবি ফদেং ফুরত মালগন মেমে ফাশাগতি মিদে হুকুর দো হাতারে সেপ্টেম্বর গ আন আম হেলুন তেরি কুরুমগে হারকাত তেগে তেরেং ই আর্টিফিশিয়াল বিচ কা বেবন হারকাতিং একি উমর ফরাতক খাস কোগে দেং মি হারকাং আলগন মেং কুরে গিন্দি দিবি রাজ্যকে কওমি ইউনিভার্সিটি কে ফ্যাকাল্টি অফ হেলথ সায়েন্সেস কা ফিজিওথেরাপি গ দায়রান তালিম হাসিল কুরমুন্দা দারি বরুন না গুলিগিং একু দিন এফ সেপ্টেম্বর ফার্স্ট ওয়ান দুহু হাম মি কুদিন এখন আর্নি হুড়মালে ফিজিও ফান রান গে নামুগা ফার্স্ট কিলোমিটার গে দুমে মি ওয়ানে কুড়িয়া গেন গোসা দিন মি গে ইতুরং হাম মি হারাখায় ರಾಜ್ಯಗೆ ಏಕಿ ರಶ್ಗ ಕುರಿಯ ಗೆದ್ದಮ್ಗ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಹಾರವಾಣಿ ಅಲ್ಮ ಹುಳುವಾಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗುಳಿಗೆ ಮೀಗೆ ಇತ್ತು ಅದಿ ಕಾಫ್ ಕುರಾದುಗ ಖಾಸಹಿಯ ಬೇಣುವ ಮರ್ಕಸ್ಗ ಸೆಷನ್ ತಕ್ಕ ನೆಗುಮ ಬಸ್ವಾಣಿ ಹಮ ಜೈಫ ದೆಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊಗೆ ಬಾರವಣ ದೊಳಗಣ್ ಮೆಂಗ್ರಾವಾಫ ಹರಕಾತೆ ವಿಲುಂ ವೆರಿ ಹಿತಕು ಮೀ ನಮಗ ಕೋರಿಯಕ್ಕೆಂದ ಹರಕಾತೆ ಮೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗೆ ಬಲಿ ತಹಮಲ್ ಕೂರ ಮುಂದ ಅದಿ ತಹಮಲ್ ಕೊಫಾವ ಬೇಫುಳ್ನ ಖಾಸ ಕುಗ್ಗಿಂಗ್ ಗುಳುಂಬದೆ ಕುರುಮ ಏಕ ಕೊಣಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಏಕ ಕೊಣಕ ಕುಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಹಿವ್ವರು ಲಿಬಿಗತು ಮಟ್ಟಕ ಕುರಿಗೆಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಮ್ಮಿ ವಣಿ ರೇಫ ದೆಂಗ್ ಅದಿ ಇತುರು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಹರಕಾತ ವೆಸ್ ಎಬೋರಿ ರಾತ್ ಕುರೆ ಬೆಳಗೊಂಡ್ ಮೇಗೆ ಮಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮನ್ಸ ತಕ್ಕು ವರಂಗ ವಹಂಗ ಯೋದಾನ್ ಕುರವಿಗೆಂದ ದೇವಿರಾಜಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಸಲು ವಜೂದಂಗ್ ಆಸ್ಪವನ್ ಇದಿಹಾಸ ನಾರವಣ ಹರೋಹಣಸ್ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಆಲಮಿ ವಬಾಯ ಕೊಳಗಣಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತವಸ್ ವರ ಬುಡ ಮಾಡು ಜೈಕಿ ದೇಫು ಆಲೋಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿ ಫಶಾಗನೋನಿ ಮಿದಿಯ ಹರದೇ ಹಸ್ಪನ್ಸ್ ವೇಸ್ವಣ ಹರಗೆ ಮೇ ಮಹು ದೆನ್ ಮಿಹಾರ್ ಇರಾತ್ ಕುರೆವೆ ಜಮಿಯಾಗ ಸತೇಕ ವೃಗಿನ ಮೆಂಬರು ಬತಿ ಬೇದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಕುಳ್ ತಕುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವ ದಿವೆಹಿ ಅದಿ ಬೇರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಉನ್ನ ಎಕ್ಕೊ ದೆಂಗ್ ಹಮೆಹೆಮ್ಮೆ ದೇವರಾಜ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೆವಾದೆವ್ವಾ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಕಿ ಮಾತಾತ ಕೆವಾದೆವ್ವಾ ಬೇಫ್ಲುಂಗ್ ಅಹಮೆಹಮೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೆವಾ ದಾರಿ ವರುಂ ಅದಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಉನ್ನಾಯ್ಕೊ ದೆನ್ ಜಮಿಯಾಗ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಮಗ್ಸೆದೆ ಕಿ ಬೊಡ ಮಿ ತಾಯರಾಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಫಣ್ಣಿ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಹಗ್ಗು ತರ ಕಾತರಿ ಕುರುಮ ಎ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಅಣೆ ತಾವ್ಲೀಮಿ ಅದಿ ತಮ್ರೀನ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತ ಹೋದ ಅದಿ ನು ಹಮೆಹೆಮ್ಮೆ ಆ ಮುಂಗ ಮೆದುಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಕಮ ಮೆದು ಹೇಳು ತೆರಿ ಕುರುಮ ಹೆಲಿ ಫೆಲಿ ಒಳಗ ಮುಹಿಮ್ ಕಮ ಮೆದು ಹೇಳು ತೆರಿ ಕುರುಮೆ ಕಹಲಕಂತ
0: ವರಪುರ ತಂಕೊಳ ಹಮ್ಮ ಪಡ್ಕಮ ಸಹ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಸೆ ಬದೇ ತೊಮ್ಮೆ ಹರಕೆ ಅಂತೇರಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವರ ಬೋಡು ಮುಜಿತ ಮೊಗದೆ ವರ ಬೋಡು ಕಮಿಗೆ ವಾಗ ಅಸಮಿಯ ದೊಳಗ ಮಿ ದಕ್ಕನೆ ಸೆನ್ ಸಹ
1: ದೆನ್ ಕುರಿಂ ವಿದಾಳು ಎಜ್ಜೆ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿತುಗೆ ಬಲಿ ತಮ್ಮಿ ಹರ ವರಂ ಆಮು ಎಫ ವಾಹಕ ಹಿತುಗೆ ಬಲಿ ತಕೊಂ ರಕ್ಕಾ ತರಿ ಒಮ್ಮ ರಿಹಿಬಿಲಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮರುಹಲಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ದೌರಕ್ಕೆ ಕೊಬಾತೋ
3: ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಾರಂಗ್ ಇಸ್ತವ್ರೆ ಅಸಲು ಆದಾ ಕೊರೆ ಹಿಂಗೆ ತ ಹಿತುಗೆ ಬೈಯೆ ಜೆಹುಮುಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ನೋತ ಬಲಿಗೆ ನೂರಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆ ಹುಣ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟು ಹೀವೆ ದೆಣೀಮಿ ದುಳೆಹೆಯೋ ದಿರಿಳು ಮಕ ಮಗ ಫಹಿ ಕೊದ್ದಿಣು ಮಟ್ಟಕ ನಿಂಗ್ ಮಿ ಹಾಲತುಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಂಡೆ ಮಗ್ಸದ ಕಿ ಹಿತುಗೆ ಹಿಂಗು ರಂಗಳು ಕುರುಮ ಕುರಂಜೆ ಹೇ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರುಂ ತಿಂಗೆಗೆ ತುರುಂ ಬಲ್ ಮಿ ಹಾಗೆ ದಿರಿಳುಮುಗೆ ಫೆಮ್ಮರು ಎಂಗ್ ಹಮೆಗೆ ಹಿ ಫಟ್ಟ ದಿನುಮ ಬಲಿಗೆ ಹಾಲತ ವಾಸಲ್ ವೆಫವಾ ಫರಾತೆ ನಮ ಇಹುಹುರಿ ಹಾಲತ ಗೆಂದಿಯುಮ ನೋಣಿ ಇಹುಹುರಿ ಹಾಲತ ಗಾತ ಗೆಂದಿಯುಮ ಕುರಂಜೆ ಹೇಮ ಸೆಕ್ಕೆ ತಂಗಳು
0: ಹಾಲತ ಗೆಂಗುಸ್ತಿನ ಏಮ ಮಿ ಸ್ವರ ಮಿ ಹಮ ಮುಹಿಮ್ ಸಮಾಲ್ಕ ದೇಂಜೆ ಹೇ ಕಮೆಕ್ಕೆ ವಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಿ ಸ್ವರ ಆದ ಕಮೆ ನೋನೆ ದತ್ತ ಏಮ ಮಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜೆಹಿ ಏನೋ ಹಿತ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಫಾ ಮಿ ಹಕ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಫೆಶುಮ್ ಮಿ ಹಮ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಕಮ ಅಲ್ಗೊ ಮೇಡಮ್ ಮಿ ಫಾ ಕೊರವನಿ ಕೊಬೇತ ಮಿ ಕೊಂ ಹಿಸಾಬ ಎಮ್ಮೆ ಕಶಿ
3: ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜೆಹಿ ನೋನಿ ಹಿತುಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಫಹು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಫರವಾ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿನ್ನ ನಿಮಿ ಹಾ ಅಣೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಕೋರಾ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಕೋರಾ ಹಿಸಾ

0: थुरास थुरास
1: थुरास ऐ तारीका अहर मेंग बहा सगाफता आद का दायक तेरेगा आद ब्यावर गंत तके हुरे अडवहा लंबेनम ता
2: हाँ वारा पैनो
3: दिविराजे का ट्यून कोला अंगार दोग हावीर फाहिज जहर बुरासे दोग हावीर हाथरोगड़ फनराग आदि आदित दोग हावीर फाहिज जहर हमें कने दिविराजे के आड़ो

0: पहाड़ों
1: थी वाला
0: अगर अंगनवाणी हम रखे सका हियाल बदल को वहां का धक्का ला एक मकों का हाल तो लिबे नहीं बला बला वहां का देखिए नहीं
1: देखा स्वागत के सही था अने मिहार मी फेरी है नू ना कि आम को मी है दिमाग
0: फेरी नहीं आम को तिपना है मी होना हिस्सा को राजा इन नंदा
1: आनु कुरान हिस्सा
0: इतो कैसे मैं फोरो जाके होन ना अने
1: सही था बोल बे रंगलो कमेंट था
0: रंगलो कमेंट नूंगे एक गोदे कमेंट
1: एम हूँ के हिवरु का दखन दखा वे के मी नुकिया देने दो बस वहाँ के
0: बोले देख असल में कमेंट नून दो कि मी यहाँ बाईये का वो शेडो नहीं मकमा का रंगलो बस नून
1: इन्हें कुडो मिकिया बाईये
0: के मी यहाँ रक्का तेरे को हो जाए करने रंगलो वाले देख अमिल्ले नक्सानी भाई हम होशे ऐडी नहीं हैं इससे सरना गोस एक बात हम वहाँ का होरे किन कमा कुंडल है ना तो
1: जमीन में क्या बैठे कोड बेस
0: का हिस्सा कर लिया वहाँ का
1: मेरा बाय फार बाय मैं फिर हम बेफुन विष्णा को तो क्या देखो बेस ओवे बाय फार वाव तो कि एकल आयली मसल तंग हम में उन अंगम बेन उन नुवा थीवे नुबु नहीं फाहट ने दो एक हाल का अंत तब से
0: बाद मैं वाने दो हर मांग हम को दिन रेजी हम किया देने हम
1: वाले मांग को दिन नोट पे बना का कदा कम विष्णु किए
0: दो हम में कदा जवाब कदा हम में का हिस्सा कर ले
1: ना अरे हम भी मांग को दिन
0: ಬಾಲಿಕಾಶಿದ
1: ಹುಟ್ಟುವೆ
0: ಡ್ರಾಮಾ
1: ಡ್ರಾಮಾ ರೀತಿತ ಅದಕ್ಕಿ ರೀತಿ ಬುಣಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗುಳಾಫ
0: ನಗಾಣೆ
1: ಫೋನ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ ಕುಡ ಇರ್ಕೊಳಕಂಗೆ
0: ಕೊಮ್ಮೆ
1: ಸೈದ ಹಿಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಹಾಲ ಮಾದ
0: ಬಾಕಿ
1: ಬಾಜಿ ಬರೀ ವರಸಲ್ಲ.

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुन कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं